0: ईस्ट एफएम
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं

की एक एक की पीर पछान है, घट घट के पट पट की जान है, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरतव देह अपारा, जब आ करख करत हो कबहू, तुम मैं मृत दे तर सब हूं जे

ऐं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए है ताके काल निकट ने आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्राय तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो।

हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो

0: भी मैं सोच ही नहीं थी कि ये किसकी आवाज है, तो चिराग पटेल ने कह दिया येसुदास। क्या कमाल का डुअट था आशा भोसले का, पर बहुत कम गाए होंगे इन्होंने येसुदास के साथ गाने। खैर
1: रघुन जी, जाने मन जाने मन ये गाना फिल्म छोटी सी बात का है, जिसको येसुदास और आशा भोसले ने गाया है और जिसको योगेश ने लिखा है और जिसकी धुन सलील चौधरी ने बनाई है। ये गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गाना अच्छा लगा।
0: प्यार अली भाटिया ऑन टाइम, और सनाकाना शुक्रिया आपका। शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डिड यू नो अ हेन इज बोर्न विद ऑल द एग योक्स, शी विल एवर प्रोड्यूस ऑलरेडी इनसाइड हर बॉडी। तमाम एग योक्स खुदा ने एक मुर्गी के पेट में रखे हैं जो कि उम्र भर वो प्रोड्यूस करेगी, पैदा करेगी। क्या बात है, साथ चलते हैं चिराग पटेल की तो का मैसेज मैंने आपको बता दिया। रंजन विनोद फ्रॉम लंदन कहते हैं गुड स्टार्ट, लवली ओल्ड सॉन्ग। इतने भी ओल्ड नहीं होंगे आज, आज जरा जरा नए नए। और भरत गंगाराम आपने प्रणाम किया, सभी को विश किया है। और लखबीर, अच्छा जो लखबीर का है, हाउ डज अ पर्सन फाइंड पीस, शम्स तबरेज, व्हेन दे नो लॉन्गर फियर द लीविंग ऑफ अदर्स, और रूमी, एंड इफ दे आर लेफ्ट अलोन, शम्स, ही हु हैज फाउंड हिमसेल्फ इज नेवर ट्रूली अलोन। समझ, ये जो थी एक मास्टर गुरु जिसे आप कहते हैं और एक उनका शिष्य जिसको आप तालिब इल्म कहते हैं, तो वो एक बात कर रहे हैं, हाउ डज अ पर्सन फाइंड पीस, ये कहा है रूमी ने। तो शम्स कहते हैं व्हेन दे नो लॉन्गर फियर द लीविंग ऑफ अदर्स, जब वो नहीं सोचते कि इसके जाने से क्या होगा, रूमी, एंड इफ दे आर लेफ्ट अलोन, तो शम्स तबरेज कहते हैं ही हु हैज फाउंड हिमसेल्फ इज नेवर ट्रूली अलोन। कमाल है लखबीर। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा, आशा भोसले का मोहम्मद रफी के साथ ये गाना।

0: और सना काना, थैंक यू. सैली डार लंदन में है, समिन हमारी लिसनर. उन्होंने कहा है कि आज मेरी सालगिरह है. बताया है कि कितने साल मुकम्मल कर लिए हैं आपने, पर मैं इजाज़त लेना चाहती हूं उनसे इससे पहले कि मैं बता दूं कि वो कितने, माशाल्लाह, जो आज अपना बर्थडे मना रही हैं. कई दिहाइयों से यहाँ थी, समिन नैरोबी में इनकी पैदाइश हुई थी, सैली डार, लेकिन अब लंदन में काफ़ी सालगिरहें वहाँ भी मना ली हैं. आज यूके में केक काट रही हैं. तो सैली डार, अगला गाना, अगले दो गाने हम आपको डेडिकेट करेंगे. आशा भोसले की आवाज़ आज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हीं के गाए हुए. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हमारी पूरी टीम की जानिब से सैली को. यहाँ भी सुनती थी, वहाँ भी, यूके में भी. फसिया कुरैशी मायामी यूएसए में है. कल ही उन्होंने कहा कि लिसनर्स को आज हैप्पी वेनसडे कह देना मेरी जानिब से. समय वो भी हमारी लिसनर थी, रात के वक्त उनका पॉसिबल था, आजकल इस वक्त नहीं मुमकिन. जब होता है मुमकिन तो करती हैं. अब अमीर अली राना कहते हैं कि देखो, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरी स्टोरी पीपल हियर अबाउट यू. You can't correct every version of you that exists in someone's mind. कहते हैं जो लोग आपके बारे में जो भी समझें वो उनके दिमाग में है, छोड़ दें वहाँ. Some people will misunderstand you no matter how careful you are. And you learn to be comfortable with that. कहते हैं कि जो भी लोग आपके बारे सोचते हैं उनको करने दे, आप परेशान ना हो. योर लाइफ डजंट हैव टू बिकम अ कोर्ट रूम वे यू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड एविडेंस शोइंग टू पीपल दैट यू आर इनोसेंट. कहते ये कोई अदालत नहीं है, आप जो हैं वो हैं. एंड विशिंग ऑल हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, मे दे हैव अ ब्लेस्ड डे. अमीर अली राना, बहुत मेहरबानी. सोनल, आपने कहा है, नहीं ये हमारे लिए नहीं था, भरत गंगाराम लंदन से. परवीन जी, कल फिल्म बंटवारा देखी और फिल्म देखने लायक है. बंटवारा, इंसानियत जिसे कहते हैं, वो उस पर फिल्म दर्शाती है. ओके, भरत गंगाराम बंटवारा देखेंगे अगर मौका मिला तो, ऑफ कोर्स. और शबीर अहमद फ्रॉम लंदन, शहजादी साहब सलाम मेरा भेजें एक एक लिसनर को, क्या बात है. शैलेश और शीला, बहुत शुक्रिया, आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: भांगड़ा. बॉलीवुड हिट्स एंड बैलेंस टू सिंग अलोंग विद
2: ईस्ट एफएम,
1: केन्यास प्रीमियर
2: एशियन मिक्स. इट्स 10:20.
3: Imagine getting rewarded for the transaction fees you pay. With Airtel Money, every time you send money to any network, you get 50% back of your transaction fees into your cashback wallet. Buy electricity tokens and you'll get your units plus 50% cashback. And Airtel to Airtel, absolutely free. Why let transaction fees take your money when they can put that money back in your pocket with Airtel Money? Airtel Money. Download the My Airtel app or dial star 334#.
1: East FM.
2: East

0: कमाल किया है आशा भोसले किशोर कुमार ने। परवीन भट्ट कहती हैं आप मूड चेंज करने की बात कर रही हैं, गीतों से मूड नहीं चेंज होते, जो आप कहती हैं ना उससे मूड चेंज हो जाए। परवीन भट्ट थैंक यू। बिंदु फ्रॉम जयपुर क्या कहा है?
1: सभी को नमस्कार। बंटवारा फिल्म जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन हमने पिक्चर देखी और हमको बहुत बहुत अच्छी लगी। और आज तो भाई गाने इतने गजब के आप लगा रही हैं, बहुत मजा आ रहा है।
0: देखा ना बिंदु, मुझे पता है इनको पुराने गाने भी पसंद हैं लेकिन नॉट सो पुराने भी। वाह बहुत अच्छे, आप एंजॉय कीजिएगा बिंदु। और बंटवारा के बारे में उन्होंने भी कहा है कि बड़ी अच्छी फिल्म है, इसका मतलब देखनी पड़ेगी। एक्चुअली तो बंटवारे पर काफ़ी ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं, समझ नहीं आती कौन सी देखें। हैप्पी बर्थडे सैलीडार, मे शी हैव मैनी मोर, फ्रॉम अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर। अच्छा सैली के ही मुल्क में है, यूके में। और आप क्या कहते हैं?
2: सब्र, सब्र यानी पेशेंस। सब्र का असली मतलब जब आपके पास जवाब देने की पूरी ताकत और वजह हो, फिर भी आप सिर्फ अल्लाह की रजा और इंसाफ पर भरोसा रखकर चुप रह जाए, वही सच्चा सब्र है। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम, सलाम आमद किसुमो।
0: वाह थैंक यू।

0: किशोर और आशा भोसले और भरत गंगाराम फ्रॉम लंदन करेक्ट आंसर आपने दे दिया है सुपर्ब सॉन्ग्स आप एंजॉय कर रहे हैं हबीब वेरी गुड और एक और मैसेज जो आया है
1: नमस्कार प्रवीण जी आज का प्रोग्राम रियली इनक्रेडिबल एंड हिलेरियस अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा लिसनर से पूछेगा कि एक पंजाबी में और यहाँ मतलब उत्तर भारत में एक वर्ड यूज किया जाता है सेपी कि फला फला वो सेपी करता है गांव में या पंजाब में गए पिंड सेपी करता सी या सेपी करता है कि आजकल सेपी करने वाले है और सेपी का मतलब की है वो प्लीज जरा एक्सप्लेन करें जो अपने पंजाब के या रूरल पंजाब तो है या कोई भी मतलब कि नॉर्थ इंडिया के रूरल एरिया उन्होंने ज्यादा पता होगा कि सेपी वर्ड कि वास्ते यूज होंगे सेपी
0: अच्छा मैंने तो कभी सुना भी नहीं हुआ अगर किसी ने सुना हुआ है तो ठीक है पहले बहरी जहाज की बात करते हैं फिर सेपी की रसीला परवीन जी इट्स ट्रू दैट द सैनिटेशन इज पुअर देर इज नो फूड दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स ये जो जहाज पे हैं आई वॉच्ड ऑन द न्यूज इज सो सैड एंड टू ट्राई टू कमिट सुइसाइड Of course, the families would be worried, आपने कहा रसिला बिल्कुल सही इस जहाज पर कल्पना ने सही जवाब दे दिया है कल्पना कुलकर्णी सना नो और सोनल मोदा आपको नाम देना है मेजर एन यास्मीन वांजा बहुत अच्छे मंजुला विश्वकर्मा ने सही जवाब दे दिया है बहुत खूब

0: चरितु गुप्ता ने भी कुछ कहना है। हम बात कर रहे हैं एक बहरी जहाज की।
1: प्रवीण जी नमस्कार। ये सेपी पता क्या होता है, पंजाब में गांव में ये वर्ड बड़ा यूज होता है ना, ये जो बहुत लंबे समय के साथ परिवार के साथ काम कर रहा होता है ना, उस व्यक्ति को सेपी बोलते हैं। क्योंकि कई बार बोलते हैं ना, ये हमने सेपी को गेहूं दे दी, यानी कि हमने वो काम करता था, हमने बदले में उसको गेहूं दे दिया। मेरे को तो यही पता है, क्योंकि हमारे पापा की दुकान में वो गांव से आते थे ना वो ग्राहक, तब वो कभी कभी ये वर्ड यूज करते थे। पता नहीं गलत हूँ ठीक हूँ, जैसे वो कभी कभी वो सलमान खान के पिताजी सलीम को बोलते होते हैं ना कि ये मरा जो बॉडीगार्ड है, ये मेरी वाइफ के दहेज के साथ आया था। तो कभी कभी मैंने उनके प्रोग्राम में सुना है, वो ये सलीम खान बहुत ये वर्ड यूज करते हैं। रितु गुप्ता,
0: हाँ बिल्कुल रितु, ये लग रहा है कि आप ही का आंसर करेक्ट है, क्योंकि कृष्ण सरोय ने भी यही कहा है लंदन से कि जैसे कि किसान आपको काम पे रखे, खेत में काम करने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, फिर वो आपको जो पैदावार होती है उसी में से आपका हिस्सा निकाल कर दे देता है, ये मतलब कि सैलरीड जॉब नहीं होता। राइट, सोनल मोदा, नो दैट इज नॉट करेक्ट। और रसीला, रसीला ब्यूटीफुल सॉन्ग, फिर मिलोगी, ये फिल्म ये रात फिर ना आएगी, इसमें विश्वजीत थे, क्या बात है। और मंजुला विश्वकर्मा ने इस गीत की फरमाइश की थी।

0: बंबई का बाबू। रितु गुप्ता, ओ मैंने समझा कि आपने आंसर में लिखा है वो सुचित्रा सेन। ओके, बिल्कुल सही आपने कहा रितु गुप्ता। शबीर अहमद लंदन कहते हैं मंजुला विश्वकर्मा की क्या चॉइस है, आशा और रफीका ये सबसे अच्छा, ब्यूटीफुल डुएट। और कपिला ढिंगरा कहती हैं कि देवनंद और सुचित्रा सेन, वाह क्या बात है उस फिल्म में। अच्छा, किसी ने इतने अच्छे समोसे और भजिए तैयार किए हैं पर सिर्फ तस्वीरों में है। चलो एंजॉय कीजिएगा। समझ, हम क्या करते हैं आंसर दे देते हैं। वो जंगी जहाज का नाम है USS अब्राहम लिंकन, अमरीकी है बेड़ा। समझ, सबसे बड़ा ये वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और महीनों से वहाँ पड़ा है। और जो इंतज़ामिया है करंटली अमेरिका को की हुक्मरानी जो कर रही है, वो कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक ठाक है सब कुछ, हमने अपना नुमाइंदा वहाँ भेजा था, कुछ ख़राब नहीं है। और वो लोग तंग आए हुए हैं, जैसा कि आपने सुना है, लिसनर्स ने बताया कि कैसे हालात हैं।
1: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM. Asian Mix. No one plays more of your Bollywood favorite.

0: East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
2: अच्छा समय ये USS Abraham Lincoln क्रिश्चियन सरोवर कहते हैं कि चार दिन हो गए हैं वो वापस लौट गया है सो समय वो भी चेक कर दें क्यों आई एम नॉट श्योर कि ये निकला है अभी कि नहीं लेटेस्ट तो इन्फॉर्मेशन यही है कि वही है रितु गुप्ता बिल्कुल मैंने कह दिया था आपका आंसर करेक्ट था अब देखते हैं जोहानिसबर्ग से हमें कॉल आई है
3: अस्सलाम वालेकुम परवीन जी आज के प्लेलिस्ट की तो क्या बात है लाजवाब बेमिसाल जो भी कहे वो कम है आपने तो सारे के सारे मोती हीरे सब जवाहरात सब इसमें ऐड कर दिया है और सच में और अभी जो आपने लास्ट गाना भी लगाया था बम्बई का बाबू इसके अंदर जो आशा भोसले का जो इतरा के गाना है इतराना है वो तो वो ही कर सकती है और आपकी चॉइस की क्या बात है आपके हार्ड वर्क का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे गिव यू गुड हेल्थ गुड वेल्थ एंड प्रॉस्परस Shazadi from Johannesburg. Jazakallah so much. Parveen ji, मैं अपने सारे काम को एक बाजू में रखकर आपकी प्लेलिस्ट को enjoy कर रही हूँ और सच में मैं क्या कहूँ उसके कोई जवाब ही नहीं है आपने जो आज जो प्लेलिस्ट को प्ले करा है Jazakallah so much.
2: Shazadi Adam from Johannesburg, South Africa. जी मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों की चॉइस क्या है कैसे कैसे गाने और हर रोज़ समय डिफरेंट मिक्स होता है डिफरेंट सिंगर्स होते हैं तो इस तरह से अब ताकि आप सब जो भी जिस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं वो एंजॉय कर सकें यहाँ पर आई है एक और आवाज़ आई है मंजुला विश्वकर
4: सबसे पहले तो थैंक यू परवीन जी ये गाना लगता है तो झूमते हैं हम लोग बहुत अच्छा लगता है मुझे और परवीन जी आशा जी की आवाज़ में एक चंचलता है एक चुलबुलापन है जो लता जी की आवाज़ में नहीं है और क्लासिकल गाने आशा जी ने जी भी बहुत अच्छे गाती हैं लेकिन ये अलग बात है कि उन्हें ज़्यादा ऐसे गाने गाने को नहीं मिले और मराठी संगीत जो होता है उसमें एक भावगीत होता है तो उसमें तो बोलते हैं कि आशा जी के गाने ज़्यादा अच्छे होते हैं लता जी से तो आशा जी व लता बराबर की टैलेंटेड हैं आशा जी बिल्कुल भी कम नहीं थी
2: सही कहा विश्वकर्मा ये हम कह रहे थे कि इन सर्टन रिस्पेक्ट्स वो लता से भी आगे जा चुकी थी बाय द टाइम शी डाइड अच्छा मंजुला विश्वकर्मा ठीक कहा आपने और अमीर अली राणा आपने कहा कि अब्राहम लिंकन इज ऑन इट्स वे टू द स्टेट्स बट विद नो रेशंस ऑन बोर्ड अच्छा इट्स ऑन इट्स वे वो सफर पे निकला हुआ है अमेरिका वापस जा रहा है वेरी गुड कि अगर ये सोच लिया है रोशन कांजी बहुत शुक्रिया आपका आप ये गाना भी एंजॉय करेंगी

और रसीला कहती है वन जेम इज फॉलोइंग अनदर सच स्पेशल सॉन्ग्स फ्रॉम द बिगिनिंग. थैंक यू परवीन जी, थैंक यू रसीला. आपका नेवी अनाउंस्ड दैट द अमेरिकन नेवी दैट द कैरियर इज प्रिपेयरिंग टू डिप्लॉय टू डिपार्ट द रीजन एंड रिटर्न होम टू सैन डिएगो आफ्टर एन एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट. तो आपने कहा है कि इट्स प्रिपेयरिंग टू गो. All right, somebody said it's on the way, but ये चार दिन नहीं हुए. क्या बात है आशा और रफी की. और ओपी नैयर का म्यूजिक था शब्बीर अहमद वाकई.

0: जी अश्विन
1: जी,
0: कितने चंचल थी ये.
1: यस, दिस इज, मुझे ये गाना बहुत पसंद है.
0: राइट,
1: ये आशा भोसले ने रियली सम डिफरेंट वे ऑफ गाना गाया है.
0: काफी कॉकेटिश लग रही हैं
1: इसमें. यस यस, ये थी फिल्म साहिब बीबी और गुलाम.
0: अच्छा,
1: और वाहिदा रहमान पे फिल्म आया गया था.
0: अच्छा, मुझे लगा कि शायद मीना कुमारी, तो मैंने कहा वो बिचारी क्या कर.
1: मीना कुमारी नहीं, ना मीना कुमारी ये गाए ऐसा गाना नहीं गा
0: नहीं गा सकती बिल्कुल.
1: उनका ये
0: तो वहीदा थी.
1: वहीदा थी. और आई लाइक द स्टाइल परवीन जी. यस, एंड रियली समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, इसलिए मुझे पसंद है और yes. मैंने आपको फोन किया.
0: बाकी और अश्विन, आपने देखा एक एक लाइन वो डिफरेंट तरीके से गाती हैं. समथिंग यू नो शी एड्स ऑन इन एवरी स्टांजा, एड्स ऑन समथिंग न्यू.
1: यस, हेमंत कुमार का म्यूजिक था भाई जी.
0: अच्छा, okay.
1: और गीत सभी लिखे थे शकील बदायूनी ने.
0: बदायूनी, ऑफ कोर्स.
1: और यस, फिल्म रिलीज हुई तभी ये फ्लॉप हो गई. लेकिन बाद में जब गुरुदत्त नहीं रहे, गीता दत्त नहीं रहे, तभी इनका अप्रिशिएट हुआ. अभी ये फिल्म परिण जी क्लासिक में
0: गिनी
1: जाती है.
0: Really?
1: और यस यस, एंड इट्स one of the top most film of the century.
0: Kamal hai, kamal.
1: Or it is said, this was best by Meena Kumari acting. Unki acting, abhi sam kehte, bolte hai ke pakiza, lekin the difference of opinion hai, lekin mujhe lagta hai ke Sahib Bibi Gobind Gulam mein unki acting top.
0: राइट, और पाकिजा में तो वो बेचारी इतनी बीमार थी, कमजोर दिखती भी थी.
1: यस, एंड शी डाइड इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज ऑफ द मूवी.
0: या
1: राइट, अभी तभी तो वो एक सीन भी करती थी तभी उनको रेस्ट लेना पड़ता था. और दुख परवीन जी उनकी तो बात करे तो मुझे
0: किस्मत में
1: बस बहुत अफसोस होता है.
0: राइट राइट,
1: क्या स्टार थी ने, क्या हो गया.
0: राइट, किस तरह दुनिया से गई.
1: यस,
0: थैंक
1: यू. लेकिन ये गाना आशा भोसले का
0: मुझे आया हुआ है. राइट,
1: इसलिए
0: कुछ और भी आ रहे हैं आगे.
1: हाँ, बस देखूंगा कभी.
0: जी जरूर,
1: मेरी पसंद का होएगा तो मैं आपको
0: ऑफ कोर्स
1: फोन करूंगा.
0: ओके ओके अश्विन.
2: It's 12:18. Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs, or a segment of a program? There are a number of ways you can make a complaint or comment. You could send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.
3: Your favorite

0: और समिन भास्कर पटेल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम से आप सबको ग्रीट किया है. कहते हैं कि नैरोबी वालों को, केन्या वालों को मेरा सलाम फ्रॉम मैनचेस्टर. और मंजुला गुरसिया ने आपके लिए एक सवाल भी भेजा है, लेकिन पहले
1: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी. द सॉन्ग्स यू आर प्लेइंग टुडे आर अ वेरी गुड रेमेडी फॉर पीपल हु आर इल, हु आर सिक. लिसन टू देम, they forget about the sickness and they recover very quickly. Thank you so much.
0: और सलीम मेहर, ऐसा लगता है आप तो बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं. आज आपकी आवाज में बिल्कुल सेहतयाब हो गए, ये निशान मिलता है. रंजन विनोद, enjoying the songs of Asha ji. जी जी. और मंजुला गुरसिया कहती हैं कि he acted as a villain in Amitabh film The Great Gambler and Inqalab. He also acted in films like Shelley's Hamari Bahu Alka. I liked his chashma, spectacles in which he used to wear in every film. I can see ye bade acche adakar the. Today is his 33rd death anniversary. 33 baras pehle इनकी वफात हो गई थी, 19 अगस्त 1993 में. ये कौन है? ही एक्टेड एज अ विलन इन अमिताभ्स द ग्रेट गैम्बलर. चश्मा पहनते हैं और 33 साल पहले चल दिए. और सैली डार फ्रॉम लंदन कहती हैं कि आई रियली थैंक द लिसनर्स हु विश्ड मी, इट रियली मेड माय डे. एंजॉय योरसेल्फ सैली डार, हैव अ फैंटास्टिक बर्थडे. और अगला गाना, अच्छा वो आपने बताना है कि वो विलन का नाम क्या है जो विलन बने थे इन अमिताभ फिल्म. वैसे बड़े अच्छे अदाकार थे.

लंदन वालों को सलाम भेजा है यूसुफ भट्ट ने भास्कर पटेल को भी विश करने का कहा है और जिनकी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे फ्रॉम यूसुफ भट्ट और हम चलते शब्बीर अहमद आपने कहा कि ये एक्टर अजीत थे नो अजीत नहीं थे और कामिनी ने जो जवाब दिया है वो करेक्ट है बिल्कुल और रसीला वही जवाब सही ही वॉज अ ग्रेट एक्टर सोनल मुदा आपका सवाल जवाब करेक्ट रितु गुप्ता बिल्कुल सना काना ठीक और एम एल विश्वकर्मा कमाल है वो भी करेक्ट हैं और मंजुला विश्वकर्मा ने भी करेक्ट आंसर दिया है बिंदु राइट बिल्कुल राइट आंसर है अमीर अली राणा टुडेज शो वॉज एंटरटेनिंग एज यूजुअल एंड ग्रेट डिस्कशन सॉरी कुड नॉट ब्रिंग मसाला टी क्या करेंगे जो भी है आपने कानों से सुनना है और अपने कमेंट्स देने हैं यही हमारे लिए बिल्कुल सही समय मैंने आपको एक खबर देनी थी इससे पहले कि मैं ले जाऊं ये खबर घर कई बार ऐसा होता है आपके मैसेजेस इतने आते हैं कि वक्त नहीं मिलता डॉक्टर्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया है आप कहेंगे कोई सर्जरी की होगी कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की होगी नहीं नहीं नहीं श्रीलंका में एक आदमी के ब्लैडर से पथरी नहीं पत्थर निकला है सर मैं तो देखकर हैरान हूं इसका वजन 3 किलो से ज्यादा है 3.1 किलोग्राम पत्थर गॉल ब्लैडर 55 साल श्रीलंकन शहरी को स्ट्रोक हुआ तो स्ट्रोक की वजह से वो अस्पताल लाए गए और वहाँ पर इलाज के दौरान कुछ अजीब दिखा तो उन्होंने ये ऑपरेशन किया पत्थर निकाल लिया कहते हैं वहाँ के डॉक्टर्स श्रीलंका के कि ये तारीख का सबसे बड़ा ब्लैडर स्टोन है 3 किलो जिसे सर्जरी के जरिए निकाला गया तो फिर पूछा गया डॉक्टरों से कि कब से था ये कब बना है ये पत्थर कहते हैं मरीज के जिस्म में 10 बरसों से बैठा हुआ था खामोश

0: आपने माया आशा भोसले के तरह तरह के गीत गाने सुनाए हैं, लेकिन रसिला कहती हैं शी सैंग सो मेनी डिवोशनल भजन एंड भक्ति गीत अक्रॉस ए डेकेड करियर. तो कहती हैं जय रघुनंदन जय सियाराम. क्यों नहीं आपकी फरमाइश पर रसिला, ये भी काम हो जाएगा, तैयार कर रखा है.
1: बहुत याराना लगता है. मुझे लगता है अमजद खान की बात कर रहे हैं आप. पंडित गब्बर सिंह, बहुत शुक्रिया.
0: नहीं नहीं अजय पाल, ये गब्बर सिंह नहीं थे. और शबीर अहमद ने कहा है कि अशोक कुमार, वो भी नहीं थे. देखते हैं कि वो थे कौन.
2: परवीन जी, यूसुफ भट्ट जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं. भगवान उन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी दें.
0: क्या बात है, यूसुफ भट्ट इज लकी. अच्छा चलिए ये करते हैं, जय रघुनंदन जय सियाराम. रफी साहब के साथ हैं आशा.
3: आश्रित पारिजात है

इस क्वेश्चन की दो ही कैटेगरी हो सकती है, या तो हाँ या ना, बीच का कोई हिसाब किताब है ही नहीं. इधर यू थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और यू थिंक इट्स द बेस्ट टाइम स्पेंड एवर इन लव. कमिंग अप नेक्स्ट इज अमिताभ भट्टाचार्य विद खासियत, टेकन ऑफ फ्रॉम द मूवी चांद मेरा दिल. ये मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू कम ऑन OTT नाउ एंड देन आई वॉन्ट टू वॉच. आई थिंक आई लाइक अनन्या पांडे, शी इज इन द न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स. मुझे वो काफ़ी ऑर्गेनिक लगती हैं एंड the characters that she plays in different films are very relatable, very modern, very today's woman, you know, today's girl rather. 15 minutes past 2, you're on Retro 2 right now with Niloufer on East FM.

0: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
1: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: द हेल आर यू डूइंग?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर।
0: बट लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो,